के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफन्ड गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रि चौक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9853 87775।

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब गिर्छस् त भित्र
1: के विचार को फुलीवाली मसु बहिनी
0: बहिनी त साली तिमी नै त अनि मेरो फुलीवाली

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: आस्था सुन च्यादी गहना पसल पाँच खपन चार लिङलिङको शाखा अब पाँच खपन छ वाना बजारको बस स्ट्यान्ड डाँडामा।
2: एक नम्बर सुन्न असली चाँदीका गहना आवश्यक।
0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।